सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

कबीर निर्मल बूंद आकाश की पार गई भूम बेकार बिन संगत यो मानई होए गई पाठ छार कबीर निर्मल बूंद आकाश

जिन एहो रचन रचाया तिस ही माहे समाहे कबीर कीचड़ आटा गिर परया किशु न आयो हाथ पीसत पीसत चाबिया सोई निबिहा साथ कबीर।

बिरखा सफल फलंत कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लेलाट मुक्त पदार्थ पाइए ठाक न अव घट काट कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हूं ते आद भगतन सेती गोस ते जो कीने सो लाभ कबीर भांग माशुली सुरापान जो जो प्राणी खाए तीरथ बरत नेम किए

था अगलिया जिंद ना काई मेख वारी आपो अपनी चले मसायक सेख फरीदा दोह दीवी बलंदिया मलक बैठा आए गाड़ लीता घट लुटिया दीवड़े गया बुझाए फरीदा वेख कपा है जे थिया जे सिर

करे जे पातन रह सुचेत फरीदा गली सो सज्जन बीह एक टुंडेंदी न लहा तुखा जो मालीह कारण तिना मात।

मख्य नैबहन जो जो वंज डिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलिया खूंड है काग अजय सो रब न बाहुड़ो देख बंदे के भाग कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत सुहाओ पेर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरा मेरा सोहो बसै मास ना तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी साड करे निकरिया घर

0: ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गालाए सब ना मैं सच्चा धनी हे आओ न कही ठाहे मानक सब अमोल वे सब ना मन मानक ठाहन मूल मचांगवा जे तो प्रिया दी सिक हे आओ ना ठाहे कही दा।
1: इत्थे हुण आपां ब्रेक कर लैने आ आप जी जल पानी वरत के वापस आ जायो फिर अगे हुण पट साहिबाना दे सोईए प्रारंभ होणगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तुम पात
1: अन पाठ
2: अन
1: इथे कन्ना लगिया
2: इथे कन्ना है आन
1: आनी ठीक है जी अनी भाई जी
2: आहो कन्ना नहीं चाहिदा आन ना ही पाठ ठीक
1: रंगदार पुथियां वाले नोट कर लियो जी आन लिखिया होया कन्ना पलिखे नाल लग्या होया अन ही ठीक है पाठ कला एड़ा ते नन्ना हां जी
0: एक है तू ही एक है अन नाही तुम पात

सर्व गुण निदानं कीमत सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचौ जानी जय प्रभ तेरो थानं मान तान तेरो प्राणं एक सूत है जहानं।

0: अछल पूर्ण अविनाशी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गाव है बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी
1: जा साम हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी अनंत विश्राम चालना सही है।
0: हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गाव है बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम है मिलासी धन धन ते धन जन जेहे कृपाल हर हर भयो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोह थे रहो सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसर आर दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाखेओ तेह जान त्रिपत अघाए
1: चाल दे नाल अमृत हर को नाम लैत इत्थे थोड़ा रुकना विश्राम नाम ती है चाल नाल सही अमृत हर को नाम लैत अर्थ वास्ते लैत मन सब सुख पाए
0: अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाखेओ तेह जान त्रिपत अघाए जेहे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत संगत तेहे प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो हर गुर नानक

रतन नाम अपार कीम नहो पवै अमुलो जेह कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिनहु पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिय सिद्ध साधिक ते तीस कोर तेर कीम न परिय ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत न पाए अगहो गहयो नहीं जाए पूर स्रब रहयो समाए जेहे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुकते प्रभ दाताओ दातार पर्यो जाचक इक सरना।

चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बोहो बिद जोन भ्रम्यो अत भारी खिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसुर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अरदानव एक तिल ताको मरम न पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हर जन ताकै दर्स समावत तिसह त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुखदाता नानक दास तुझ है समझावत माया रंग बिरंग करम भ्रम माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश ना मावत बिसटा अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताय महा बिखिया कौ पार धन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रसयो जम दूतन डन मृत मरयो है अनेक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गरत गरयो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्ब रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी इसनान दान तापन सुच किरिया।

0: स्वामी समरथ है। नानक दास सदा बलिहारी, आवद कट्यो न जात। प्रेम रस चरण कमल संग, दावन बंदयो न जात। विदे मन दर्श मग, पावक जरयो न जात। रहयो जन तूर लग, नीर न साकस बोर। चल है हर पंथ पग, नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग। नानक रोग दोख अग मोह छिदे हर नाम खग। उद्दम कर लागे बहु भाती, बिचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ। भसम लगाए तीरथ बहु भ्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ। बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चकर करत सोम पाका, अनेक भांत थाट है कर थटुआ। सवैये महले पहले के, एक ओंकार सत गुर प्रसाद।
1: हुण अगे भट्टां दे सवैये आरंभ हो रहे ने। पिछे धन गुरु अर्जन देव महाराज ने दो हिस्सों दे विच अपने मुखारबिंद तो बाणी उचारण की है। पहले भाग दे विच नौ सवैये सन, ते दूजे दे विच ग्यारह। ते जदों आपां जोड़ लावांगे ये भी सवैये हैं जो गुरु अर्जन देव महाराज ने उचारण किए। तो फिर इन्हां सवैयां नूं सुन के फिर अगे भट्टां ने गुरु महाराज दी उस्तत करदियां होइआं सवैये उचारण किए हैं। हुण भट्टां दे सवैये वो आरंभ हो रहे ने। इहदे नाल नाल मैं ये भी बेनती कर देवां सवैये महले पहले के, अखरां दे विच पहले के लिखे, उस तो बाद फिर एक अंक भी लिखिया होया। आम जिहड़े साधारण पाठी ने जिन्हां ने गुरबाणी की संथिया संपर्दा संस्था दे विचों नहीं प्राप्त कीती हुंदी, फिर उन्हां नूं पता नहीं लगता इहदा उचारण किवें करना। सवैये महले पहले की कहिंदे इक कर दिंदे ने, पर यह एक जिहड़ा बोलण दी लोड़ नहीं है। सवैये महले पहले की अखरां विच आ गया ना, इस वास्ते जिहड़ा इक लिखिया ना इहदा मतलब यह है भी यह इक दा मतलब पहले की उचारण करो। हुण इक नहीं कहना आपां, सवैये महले पहले के इन्ना ही सिरलेख पढ़ना ते अगे मंगलाचरण है। ते हुण अगे आप संगतां भट्टां दे सवैये सरवण करो।
0: एक मन पुरख त्याए बर दाता, संत सहार।

0: परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण सबद सरे गाव है गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गाव है इंद्राद भगत प्रहलादिक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन माणियो।
1: कब कल कल एक कल पट दा नाम आ गया कब कल कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन माणियो। एक कल पट दी बाणी है जिहड़ी सरवण कर रहे हो।
0: गाव है जनकाद जुगत जोगेश्वर गाव है जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गाव है सनकाद साध सिद्धादिक मोन जन गाव है अछल छला गाव है गुण तोम अटल मंडल वै
1: चाल दे नाल अशल सलाई ठीक है।
0: गाव है सनकाद साध सिद्धादिक मोन जन गाव है अछल छला
1: अशल छला अशल
0: गाव है सनकाद साध सिद्धादिक मोन जन गाव है अछल छला गावै गुण गो गावै गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन माणियो। गावै कपिलाद आद जोगेश्वर

त्रिदंतर श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गाव है सन काद आद जन काद जुग है लग धन धन गुर धन जन्म सख्यथ भलो जग धन धन गुर धन जन

0: मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुकम सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जाप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो गुण गाव है नव नाथ धन गुर साच समायो मां दाता गुण रवै मां दाता गुण रवै जेन चकर वै कहायो गुण गावै बलराव सपत पाताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूरबा परूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर घाट घाट सहज समायो सवैये महल्ले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समरथो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो धरियो मस्तक हाथ सहज अम्यो उठो छज सुर नर गण मुन बोय है अगाज अम्यो उठो छज सुर नर गण मुन बोय है अगाज
1: अगाज

कहो कीरत काल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार तै तो दृढ़यो नाम अपार बिमल जास बिथार साधक सिद्ध सुजान।

प्रणासन सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वास करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सत गुरु कल सत गुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फेरन सीह अंगरौ राज जोग लहना करै सदा अकल लिव रहै करन स्यो इच्छा चार है द्रोम सपूर ज्यो निवै खवै कास बिमल बीचार है एह तत जान्यो सर्ब गत अलख बिडानी सहज भाए संचयो किरण अमृत सहज भाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परस्यो कल समुलवै जन दर्शन लहने पयो मन विसास पायो गहर गहो हदरथ दी।

0: सदा सुख मन वसै, दुख संसार है खोवै, गुर नव निद दरियाओ, जन्म हम कालख तोवै, गुर नव निद दरियाओ, जन्म हम कालख तोवै, सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय।
1: इस पंक्ति दे बारे विशेष बेनती है, पूरा ध्यान दिओ, पोथी साहिब वल वेखो। आम करके बहुत सारे पाठी जो पाठ करते हैं, ये कई बार बहस भी करते, जो कई बार टोक देता, कई बार कहते सो कहो अटल गुर सेवी है। ये भगत टल जी का नाम है, इस करके इन पाठ जिमें कक्का लल्ला कल भारा करके आपां कीता है, भगत जी का नाम भट जी का वाहिगुरु, इसे तरह यह इत्थे हुण टल जिहड़ा नाम है भगत जी का नाम है। सो इस कर
2: भगत कहने
1: भट जी का सो इत सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है, सिहारी नाल है, इनू आम करके सारे परसी है पढ़ते हैं। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। इउं इहदा पाठ करना है। आम करके जदों असीं महाराज जी तो हुक्मनामा साहिब सरवण करते हैं, पहला यह मंगल के रूप में पंक्तियां पढ़ते हैं। सो यह खास करके ध्यान रखना, एक अटल नहीं टल है भगत जी का नाम, भट जी का नाम। सो इसे तरह अगे परसी है दी थां ते परसे है सिहारी दे नाल।
0: सोई पुरख सेवर साचा, जा का एक नाम अछल संसारे, जिन भगत भव जल तारे।
1: मंगल
0: सवैये महले तीजे के, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सोई पुरख सेवर साचा, जा का एक नाम अछल संसारे, जिन भगत भव जल तारे, सिमर हो सोई नाम प्रधान, तेत नाम रसक नानक लहना, थप्यो जैन सरब सिद्धि, काव जान काल सबुद्धि, कीरत जान अमरदास बिस्तीरिया, कीरत बिस्तरिया।
2: इत्थे हुण कल जिहड़ा पाठ आए दे थले उच्चन लग्या उन पारा करन वास्ते, इह कल हुण इहदा उचारण करना, पहला नहीं सी आया वैसे उचारण कल ते टल, इसे तरह ही इन्हां पट्टां दे नाम लिखे हुए।
0: काव जान काल सबुद्धि, कीरत जान अमरदास बिस्तरिया, कीरत राव किरण प्रगट संसार है, साख तरोवर मवल सरा,
2: मवल
0: मवल कीरत राव किरण प्रगट संसार है, साख तरोवर मवल सरा, उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम, जय जय कार जपंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बर, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो, उलट गंग पश्चिम धरिया, सोई नाम अचल भगत है भव तारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, सिमर है सोई नाम जख अर किन्नर, साधक सिद्ध समाध हरा, सिमर है नखियत्र अवर ध्रुव मंडल, नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर अर सूर नाम उलास है, सैल लोह जिन उधरिया, ससियर अर सूर नाम उलास है, सैल लो जिन उदरिया, सोई नाम अछल भगत है भव तारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, सोई नाम सेवर नव नाथ निरंजन, सेव सन काद समुद्रिया।
2: ठीक है, समुद्रिय पाठ।
0: सोई नाम सेवर नव नाथ निरंजन, सेव सन काद समुद्रिया, चवरासीह चवरासीह सिद्ध बुद्ध जित राते, अम्बरीक भव जल तरिया, उदो अकरूर तिलोचन नामा, काल कबीर किल विख हरिया।
2: उड़िया नुकड़िया दुलेंगड़े दा नहीं है,
0: उदो अकरूर, उदो अकरूर तिलोचन नामा, काल कबीर किल विख हरिया, सोई नाम अछल भगत है भव तारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, तित नाम लाग ते तीस त्याव है, जति तपि सुर मन वसिया, सोई नाम सिमर गंगेव पितामह है, चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गरुव मत मात सात कार संगत उदरिया
2: उदरिया
0: सात कार संगत उदरिया सोई नाम अचल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया नाम कित संसार किरण रव सुर तर साख है उत्तर दक्षिण पुब देस पश्चिम जस भाख है पश्चिम जस भाख है जन्म ता एहो सक्यथ जित नाम हर हृदय निवास है सुर नार गण गंधर्व छेय दर्शन आसास है सुर नार गण गंधर्व छेय दर्शन आसास है भलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगतल सोई नाम भगत भवजल हरण गुर अमरदास तै पायो नाम त्याव है देव ते तीस अर साधक सिद्ध नर नाम खांड ब्रह्मांड तारे जह नाम समाद्यो जह नाम समाद्यो हरख जह नाम समाद्यो हरख सोग साम कर सहारे नाम सिर नाम

0: परस है संत प्यार, जिहे कर तार है संजोग, सतगुरु सेव सुख पायो, अमर गुर कीतो जोग, नाम नावण नाम रस खान, अर भोजन नाम रस, सदा चाए मुख मिष्ट बाणी, धन सतगुर सेवियो, जिस पसाए गत अगम जानी, धन सतगुर सेवियो, जिस पसाए गत अगम जानी, कुल संबूह समतर समुद्रे, कुल संबूह समुद्रे, पायो नाम निवास, सक्यथ जन्म कल उचरै, गुर परस्यो अमर प्रगास, बारिज कर दाहिणै, सिद्ध सनमुख मुख जोवै, सिद्ध सनमुख मुख जोवै, रिद बसै बां वांग, जो तीन लोकांतर मोहै, हृदय बसै अकहियो, सोए रस तिन ही जातो, मुख हो भगत उचरै, अमर गुर इत रंग रातो, मस्तक निसान सचो करम, कल जोड़ कर त्यायो, परस्यो गुरु सतगुर तिलक, सर्ब इच्छ तिन पायो, चरण त पर सक्यथ, चरण गुर अमर पवल लै, चरण त पर सक्यथ, चरण गुर अमर पवल रै, हाथ त पर सक्यथ, हाथ लग है गुर अमर पै, जीह त पर सक्यथ, जीह गुर अमर पणिजै, नैण त पर सक्यथ, नैण गुर अमर पिखिजै, श्रवण त पर सक्यथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै, सक्यथ सो हीयो जित हीय बसै, गुर अमरदास निज जगत पित, सक्यथ सो सिर जालप भणै, जो सिर निवै गुर अमर नित, ते नर दुख नह भुख, ते नर नि धन नहो कही कहियो हो,
1: बहुता अडनी करना, ते नर पूरन च ते नर,
0: ते नर ते नर ते नर दुख नह भुख, ते नर नि धन नहो कही है, ते नर शोक नहो हुआ, ते नर से अंत न लही है, ते नर सेव नहो कीर करह,
1: ते नर उच्चारण करो, ते नर

साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुरु रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुरु।

0: le capitaine Dan qui veut gober ses vies et nous baver.
1: Voler son et aller.
2: पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का स्नान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुना के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ हुवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गात कही ना जाए जे को कह पिछे पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ना सुरत होवे मन बुद्ध मन्ना सगल भवन के सुध मन्ना मुहे चोटा ना खाए मन्ना जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत स्यो प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती सन बंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक भवह ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोह दार राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहै करै विचार करते कै करने नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन पूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीति कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे

नानक हुकमी आवह जाहु। तीरथ ताप दया दात दान, जे को पावे तिल का मान, सुनया मनया मन किता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण किते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माहो, कवन जित हुआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुत माहो, ना कोई जा करता सिर ठिकाओ साजे। आपे जाने सोई केव कर आखा, केव सालाही क्यों वरनी, केव जाना नानक आखन सब को आखै। एक दू एक सियाना, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै नानक जे को आपा। ओ जाने अगै गया ना सोहै, पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात, सहस अठार है कहन कतेबा। असलू एक धात, लेखा होए ता लिखिया, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप। सालाही सालाहे एति सुरत ना पाईया, नदिया अतै वाह पवह समुंद ना जानिया है। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन, कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस, मनहु ना विसर है। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करण देन ना अंत, अंत ना वेखन सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत्र।

कोय। बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे उपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवै कोय, तिस ऊंचे कौ जाणै सोए। जेवड आप जाणै आप, नानक नदरि करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए, केते मंगह जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार, केते खाप तुटह बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख साद मार, एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए, होर आख ना सकै कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओह जाणै जितिया मोह खाए, आपे जाणै आपे दे, आखह से पे के जिसनो बक्से सिफत सालाह, नानक पात साही पात साहु, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल पंडार, अमुल आवह अमुल लै जाहे, अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुल अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लेव लाए, आख है वेद पाठ पुर।

बाजे नाद अनेक असंखा केते बावन हारे केते राग परिसव कहियन केते गावन हारे गावह तोहन पावन पानी बैसंतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चेत गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवते आधार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माछ पै आले गावन रतन उपाए तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कार कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगतर साले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता आपना जेव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पा ते साहो साहा पा ते साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वे जोग दोयकार चला वह लिखे आवह भाग आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जीबाउ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गला आकाश की कीटा आईरीस नानक नदरी पाईया है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल पवन पानी अग्नि पाताल राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नगरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खोह कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समूह।

केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरते सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकिया गला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार विखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन ताप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पात साहिब दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद। चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख। कोउ कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप। सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन। कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे। नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे। नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे। नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे। नमस्तं निरकर्मे नमस्तं निरपरमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे। नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते। नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने। नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सोजोगे।
नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवै नमस्तं अपेवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजेय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपर्ण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंद हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं
समस्तो पराजी समस्तस्त धामं तेरा जूर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपिय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासि सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं तेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हून है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चाक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सभै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहुचित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाह
साहान साह राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाढ़ अन दंड बाढ़ चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर माने आए चतर चक्कर दाने आए चाचरी छंद न सत्तरै न मित्रै न भरमंग न पितरै न करमंग न काए अजन्मंग अजाए न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करणै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वरणै के सर्वा अपरणै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रं विहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गौना है के सर्वत्र पौना है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेसा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेसा है के सर्वत्र काला है के सर्वत्र पाला है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सोखा है के सर्वत्र पोखा है के सर्वत्र तराण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र भेसा है के सर्वत्र मान्या है सदैवं प्रधान्या है के सर्वत्र जापया है के सर्वत्र थापया है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमै के परमं फहिमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सोजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है
अगाध है अनूप है ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूपै अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सो सर्वा अनुरागै त्रिभुगत स्वरूप है अचेज है अछूत है किनरकंग परनास है पृथ्वल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है अनास है उदास है अतंत है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग कर्मंग सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतरै ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फेकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बहिस्तुल निवास है के सरबुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनचिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु
एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनादि खल खंड ख्याल गुर बर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वै प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जानिया है सर्बं भर है सर्बं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बेस्वंग पर है करुणालय है निरिप नायक है सर्ब पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्बा कृत है कर्ता कार है हर्ता हर है परमात्म है सर्ब आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं विभूते सदा सचदानंद सदा सचदानंद सतरंग परनासी करी मुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सुवैये
सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरारदन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सोएक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के परस है पग ते नर फेर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहाओ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा में है काहू पिछाह को सीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पात साही दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा
अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास ने वरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिया हो रच्छा राख लेहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरे चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी सेव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंभ आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज किनी ओत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अबरछा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला
कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हारे हो रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सत्तर है सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भादरव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो ता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार उह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर था तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडे आईया कह नानक सुनहो संता हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया
ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬੱਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨਾਉ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬੱਜ ਹੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ ਆਵਹੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੋ ਸੰਤਹੋ ਕਥਿਹੋ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਤਾ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਏ ਆਖ ਹੈ ਤਾ ਵੇਖ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਨੀ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਆਹੋ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਹੁਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੇ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੇ ਤਿਵ ਚੱਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੇ ਤਿਵੈ ਚੱਲਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵ ਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵ ਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵ ਹੇ ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ
एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सत गुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विन सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वहो शब्द लाग हो हर स्यो रह हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै इह सहसा इव जाए जियाहु मैले बहर हो निर्मल बहर हो निर्मल जियाहु ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनहो वेसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहै नाही फिर है ज्यो बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया जिया हो निर्मल बहर हो निर्मल बहर होता निर्मल जिया हो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु से ते सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जिया हो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रह परणै गुर बिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनहु संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई पुछो बिबेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखहो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदै तिना समाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछूना जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैर वाणी कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाए कै करता पे हुकम वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यो लिव लाए कह नानक आप करता पे हुकम बुझाए सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सारना जानी तत्तै सारना जानी गुरु बज हो तत्तै सारना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसया बोला है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागै
जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहो विसारिय मनहो क्यों विसारिय एवड दाता जे अगन मह आहार पहुचावे ओस नो केहो पोहे ना सकी जिस नो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक एवड दाता सो क्यों मनहु विसारिया जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया पर

जगत कसाई नील वस्त्र पैरो वह प्रमाण मले स्थान ले पूजे प्राण अपा क्या का

भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन विश्राम।

गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट फरादी तरे आरे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया

अवगुण हरन करन कर्तज्ञा स्वामी संगी सर बंग रस रसिक रसाल है। अवगुण हरन करन कर्तज्ञा स्वामी संगी सर बंग रस रसक रसाल है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर शतर तख जी दे मालक दसा ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुंदर सजे हुए दीवाना अंदर हाजरियां लगवा रही गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड़ भागे हाँ अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी मेहर सदका आपानू जिथे 84 लाख जूना विच्चों उत्तम जन्म सुमानस देही प्राप्त हुई है उस दी सफलता वास्ते कलयुग दे भयानक समय अंदर पूरन सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी संगत विच आउण दा सुभाग प्राप्त होया है। दास तो पहला बहुत ही सन्मान जो कीर्तनी है तिन्हां दे जथे पासों आप संगतां ने अमृतमई पावन गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करके लाहे लए ने। भाई साहब आपां नूं पावन बचन सतगुरां दे सरवण करवा रहे सन भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड़ भागी पाया। भुलिया होया नूं जिन्हां ने पाओ भगती दा प्रेमा भगती दा मार्ग दसिया क्योंकि अज्ञातवास जीव होण करके असल जिहड़ा इस दा संसार विच आउण दा मकसद है उहनूं भुलाई बैठा है। भुलिया कदों तों विचों गर्भ निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। गर्भ चों निकलदियां ही ऐसा माया दा हुक्म वरत्या कि इस नूं तृष्णा लगन करके परमात्मा दे नाम नूं इन्हें भुला दिता और खाना पीना हसना सौना ये जीव नूं सब चेता है पर हुण इस संसार तों इन्हें कूच भी करना ये गल भी इन्हूं भुली हुई है। विसर गया है मरना मौत भुलण करके खसम विसार खुआरी कीनी रब दी याद भुल गई पर नाल ही सतगुरां ने सुचेत कीता त्रिग जीवन नहीं रहना।

जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मिलै प्रभु हर दरगह का बसीठ हर नामो मंत्र दृढ़ाईंदा कटै होमै रोग नानक सतगुर तिन्ना मिलाया जिन्ना तुरे पया संयोग सज्जन सच्चा पातशाह सिर स्याहां दा साहू जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा वे साहू।

सबना का मां प्यो आप है, आपे सार करे। नानक नाम ध्याए अन तिन निज घर वास है, जुग जुग सोभा होए पौड़ी।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी।

भैया अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसें गुरु का जन्म मरण दुख जाई। हुआ सिबत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटिया।

एक अचरज जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए। सब मैं वसै प्रभ एको सोए,

रागनी संग उचर ही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरो की पांचो नारी पंचम हर्ष दिशाख सुनावे बंगालम मध माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पांचो थाप है गोंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खोखट ओ पौरानद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत उठह तान कलोल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी।

कमल कुसुम चंपक के नामा, गौरा औकानरा कल्याणा, अष्ट पुत्र दीपक के जाना, सब मिल श्री राग वै गाव है, पांचो संग बरंगन लाव है।

पैज राखो हर जन है केरी, हर देहो नाम निरंजनो। अंत चलदियां होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया, धन धन कहै साबाश जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया, मेरा हर प्रभ करे साबाश जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा पावे। आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल मेलावे। तुसी पुत भाई।

पढ़ी गई, उपरांत वैराग मई कीर्तन होया है। बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या सहज पाठ दौरान पाठी सिंघा पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां लई खिमा बख्शनी अगे तो समत बख्शनी। पढ़ी बाणी दा फलादेश विछड़ी जीवात्मा नूं बख्शना। ग्रीवनवाज परिवार वल्लों सरदार मेहर सिंह सिख होरां दे निमित आप जी लई सुंदर वस्त्र भेंट कीते ने। आप जी नूं सोभनीक हो रहे ने। पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर होया है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। विछड़ी जीवात्मा नूं पातशाह पिछे इस संसार विच विचरदियां जाने अणजाणे विच होईयां भुल्लां गलतियां दी मुआफी बख्शनी और अगे तो

रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ

किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पई ले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चाल। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक।

सब है करतारा, मोरचा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू करियो हो रच्छा, अराख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार।

दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नि हरिहो, ताके ताप तनक मैं हरिहो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी।

कहते पवित सात गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सात

का पयो जिसका सबस आधार, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधार। एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उरतार, तम संसार चरण लग तरी।

दीवाना अंदर अमृतमयी बाणी दा कीर्तन कथा विचार ढाडी वारा द्वारा इतिहास गायन होया है। सोदर रहरास साहिब जी की बाणी दा पाठ कीता गया। बाणी पढ़दिया कथा कीर्तन विचारा करदिया ढाडी वारा गायन करदिया होइया बेअंत प्रकार दिया भुलां लई खिमा बख्शनी अगे तो

तैसा होवह तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना, कहना किचु ना जाए। महापुरखा का बोलना होवे कित परथाए, ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए। गुणकारी गुण संग्र अवरा उपदेसेन, सेवड़ भागी जे ऊना मिल रहे, अन दिन नाम लयेन। देसी रिजक संभाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप तनी। सो सच तेरे नाल है गुरमुख नजर निहाल, आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा समाल। मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मिले ता मिल रहे हमें शब्द जलाए। सो सौ सच्चा विसर त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसर गुरमति विचार। सतगुर मेले

करना, गुर कै शब्द विचार, मिल प्रीतम सुख पाया, सुभवंती नार, मनमुख मन ना भिजई, अत मैले चित कठोर, सपै दुध पियाई है, अंदर विस निकोर, आप करे किसे आखिए, आपे बख्शन हार, गुर शब्दी मैल उतरे, ता सच बनिया सीगार, सच्चा साहो सच्चे बन जा रे, उथे कूड़े ना टिकाना, ओना सच ना भावई, दुख ही माहे पचाना, हमे मैला जग फिरे, मर जमे वारो वार, पये किरत कमावना, कोय ना मेटन हार, संतां संगत मिल रहे, ता सच लगे प्यार, सच सलाही सच मन, दर सच्चे सच्यार, गुर पूरे पूरी मत है, अहनिस नाम त्याए, हमें मेरा वड रोग है, विच्चों ठाक रहाए।

ना विछुड़ है जे अन दिन मिले ए रहन। इस जग में है विरले जानी है नानक सच लहन। सज्जन मिले ना विछुड़ जे अन दिन मिले रहन। इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।